0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकचत्वारिंशदधिक त्रयोदश सहस्रकोटि रूप्यकाणां पञ्च परियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र चतस्रः रेल परियोजनाः एका राजमार्ग परियोजना वर्तते। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिक निवेशः क्रियते, येन सततार्थिक विकासः संवृद्ध्यते। सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणात् परं परीक्षा परिष्कारे राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्र सर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलंबिया देशे भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 12,300 यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथम निकष स्पर्धायां श्रीलंका दलं 65,100 धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य 140,300,000,000,000 रूप्यकाणां पञ्च प्रमुख परियोजनानां अनुमोदनं कृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
0: एतासु चतस्रः रेल परियोजनाः एका च राजमार्ग परियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य चतस्रः बहुमार्ग